0: कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी
1: तो
0: जैसे बिजली कौन जाती
1: I will like my man again.
2: Stefan X.
1: Chukar bhai, chukar.
3: Chukar, mere man.
1: Shivayam bhai.
3: Ya tune.

0: सिंगत सिंगत पल
1: पल पल दिल के पास तुम रहती हो
0: रोशनी
1: पल पल दिल के पास
0: अब यहां टाइम फॉर वन मोर
1: जीवन मीठी
0: Somebody send my voice note, say, give me that tune.